उनसे छुप छुप के सनम रात भर जागेंगे हम, उनसे छुप छुप के सनम आंख झपके ना कभी चांद तारा।

0: Balco.
1: आजा पिया तोहे प्यार दू, ओ गोरी मैया तो प्यार दू, इसलिए तू इतना उदास, सूखे सूखे होंठ अखियों में प्यास, इसलिए इसलिए ओ आजा पिया।